0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: सम्राट महाते पांडव भाषण कुमा भाषण कालिका गोरछ गरुण र दाना बहरू नागमा रावण नासिका सञ्चल भयो।

0: पड़ो घर में जुन व्यवहार काची जाती है एक एक गति नाशियो
1: साजन दशमस्ता जो भाई मो नमस्कार भन्नुहोस् कविता प्रसन्न मनले संक्षेपी भारत विद्या।

खाई खाए परिवार अरे गाड़े फुलारे चलो जगत में तेरो नाम झोकरे झोकरे को योता पुत्र सुखले बिराट को घर में यो बातें पकाउने।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

गाईला चरोरा ना ओइना बनाया बासेलाया फुखोलाओ साथी तारालाया सको धाराया बासेलाया फुखोलाओ यो काला मुखले के भन्यो होला रिसाउनालाई माफ होला।

0: पसल चरीकोट बीच बजार गीताश्री स्टोर को ठीक अगाड़ी। थप जानकारी को लागि संपर्क नंबर 9864-6080 र 9510-89-6770। बिहानी सिलाई मेसिन पसल चरीकोट बीच बजार।
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: आज प्यार की हो डील।
1: डील बोले तो
2: हाट हाट
3: हवा यार, सौदा सौदा।
1: ओहो
0: दोनों डील कर सील।
1: टाइट टाइट वेरी टाइट।

प्रत्येक साताको शुक्रबार राति 8 बजे र पुनः प्रसारण आइतबार अपरान्ह 4 बजेको समाचार पछि कार्यक्रम गीति कथा। सुन्न नभुल्नुहोला रात्रिकालीन साहित्यिक प्रस्तुति कार्यक्रम गीति कथा।

0: ये चंगी ये है साथी संगी साई लोग ये प्रेम बगदाई छा।
1: अम्मी का हरेल गाँव कांजी जो गाँव पाजी का
2: मेरो नाम सुरसा थापा काली पोखरी हो घर सुनेर हो अरे हो।

कैलाय कानी माई गाये पाने सके ना माई ले बेरे सानो फुलफुलो तोरी एरा ना बनी छोरी सके ना माई ले बेरे सानो पारी बड़ा को तो मंचे आयो के चाया माल माता यारी रामा डलको यो जमान के चाया माल माता अले को दसैं माटी गाँव में बसाया गाँव दसैं कलकत्ता कलिलो गाबा सुनी देवै बाबा गाउ दसैं कलकत्ता भोरको वर्षा पानी नपर्नाले उमारैमा बिग्रियो जाऊ कलिलो गाबा सानो मेरो बाबा उमारैमा बिग्रियो जाऊ दिनभरि खोजीलाई साथीलाई सोधे मेरो माया कतरे छौ

मकाई लाई कानी माई गाये पाने सके ना माई ले बेरे सानो फुल फुलो तोरी एरा ना बाईनी छोरी सके ना माई ले बेरे सानो पारी बड़ा को तो मंच आयो के चाई लायो माल माता यारे रामा डलको यो जमानो के चाई लायो माल माता अहिले को दसैँ माटी गाउँमा बसाई आ गाउँ दसैँ कलकत्ता कली लोगा बासुनी देवै बाबा गाउँ दसैँ कलकत्ता भोरको वर्षा पानी नपर्नाले उमारैमा बिग्रो जाऊ कली लोगा बा सानो मेरो बाबा उमारैमा बिग्रो जाऊ दिनभरि खोजीलाई साथीलाई सोधे मेरो माया कतर छौ

0: पानी जलाई धराई पानी कुल साए पानी भरे
1: कुल पानी भरो जुम भर्नु हो
0: नि होइन त।

दंडा गाड़ेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा